प्रभु का स्मरण मन को वैसे ही पवित्र करता है जैसे सूरज की पहली किरण अंधकार को मिटा देती है। जो हर सुबह ईश्वर को धन्यवाद देता है उसके जीवन में शांति और कृपा स्वतः उतर आती है।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए चिंतन, आलेख डॉक्टर नरेश ज्योतिषी का है और वाचन स्वर है माधवी येंडे का।
1: संसार में कुछ लोग होते हैं जो अपने लिए ही जीते हैं, ये समाज से केवल लेना चाहते हैं, देना नहीं चाहते। कुछ होते हैं जो अपने लिए ही जीते हैं और दूसरों को कुछ देने के लिए भी जीते हैं, ये समाज से कुछ लेते भी हैं और समाज को कुछ देते भी हैं। किंतु कुछ ऐसे भी होते हैं जो केवल दूसरों के लिए जीते हैं, ये समाज से लेते कुछ नहीं, केवल समाज को देना ही चाहते हैं। ऐसे ही लोग महापुरुष कहे जाते हैं। अनेक सदियों पहले एक बालक का जन्म हुआ। जन्म के कुछ दिनों पश्चात माता का निधन हो गया। कुछ वर्षों के बाद पिता का भी निधन हो गया। उस घर की सेविका ने उसका पालन पोषण किया। कुछ वर्षों बाद उसका भी निधन हो गया। 5 वर्ष का बालक अनाथ हो गया, परिवार विहीन और साधन विहीन। किसी ने कुछ दे दिया तो खा लिया और जहां जगह मिली सो गया। भिक्षावृत्ति करता दिन बिताने लगा। एक महात्मा मिले, वे बालक को अपने साथ ले गए। अध्ययन अध्यापन प्रारंभ हुआ। जब बालक युवा हुआ तो महात्मा ने उसका विवाह कर दिया। कुछ वर्षों बाद वो पत्नी से भी दूर हो गया। अब संसार में अपना

0: रहने के लिए कोई नहीं रहा तो वो परमात्मा की खोज में उन्मुख हुआ और विख्यात हो गया। इस बालक को हम गोस्वामी तुलसीदास के नाम से जानते हैं। तुलसीदास को समाज ने क्या दिया? न माँ की ममता की छांव, न पिता का स्नेह, न सगे संबंधियों का सौहार्द, न पत्नी का प्रेम, उन्हें कुछ नहीं मिला। किंतु उन्होंने कभी इसकी चिंता नहीं की कि उन्हें किसने क्या दिया, समाज ने क्या दिया। अपने दीर्घ जीवन में उन्होंने किसी के संबंध में कोई शिकायत नहीं की। इसके बदले में उन्होंने समाज को सब कुछ दिया जो कुछ उन्हें देना था। वे मानवता के सद्गुणों को निरंतर बिखेरते गए, आदर्श जीवन जीने की प्रेरणाएं समाज को देते गए। आज तुलसीदास हमारे बीच नहीं हैं, किंतु उनकी साहित्य साधना के अमृत फल हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका आदि दर्जनों ग्रंथों के शाश्वत रसों का हम रसास्वादन करते हैं और आनंदित होते हैं। आज हम उनके रामचरितमानस को मानवता का विश्वकोश कहते हैं। इस ग्रंथ का गांव-गांव पारायण हो रहा है, पूजन आरती हो रही है, घर घर उनके ग्रंथ पर पुष्प अर्पित हो रहे हैं। ऐसे कितने ग्रंथ हैं हिंदी साहित्य में जिनकी पूजा की जाती हो। वास्तव में ये उस तुलसी की पूजा है जो निष्काम भाव से समाज के लिए अर्पित थे। परांत सुखाय ही जिनका स्वांत सुखाय बन गया। समाज के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव ही व्यक्ति को पुरुष से महापुरुष बनाता है, देवता बनाता है। संसार के सभी महापुरुष ऐसे ही हैं। व्यक्ति स्वयं को कितना ही महत्वपूर्ण कह ले, उसके कहने से वो महत्वपूर्ण नहीं हो जाता। व्यक्ति का मूल्यांकन समाज करता है। जिसे समाज महापुरुष स्वीकार करता है वे ही महापुरुष कहलाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास के जीवन ने मानव समाज को मार्ग दिखाया। जो स्वयं पर अंकुश लगाता है अपने सुख दुख में ही नहीं डूबता, जीवन को सुख साधन की तलाश में ही नहीं गंवाता, उसको दूसरों के लिए अर्पित करता है, दूसरों के सुख के लिए लगाता है, स्वार्थ की दीवारों को तोड़ते हुए दूसरों के लिए समय निकालता है, वही सच्चा मनुष्य है। मानव जन्म सभी जीवों में श्रेष्ठ है, उसका सदुपयोग करें। मानव को महामानव बनाने का यत्न करें, अपने पुरुष को महापुरुष बनाने का प्रयास करें। इसी में जीवन की सार्थकता है।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आलेख डॉक्टर नरेश ज्योतिषी का था और वाचन स्वर था माधवी येंडे का। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है और लीजिए अब सुनिए श्री रामचरित मानस गान।

भरत के साथ आए अयोध्यावासी मंदाकिनी तट पर ठहरे हुए हैं। माताओं, गुरु तथा मंत्री से आज्ञा लेकर भरत निषाद राज और शत्रुघ्न के साथ श्री राम के आश्रम के समीप पहुंचते हैं। माता कैकेयी की करनी का ध्यान आते ही उनके मन में संकोच उत्पन्न होता है, किंतु

राम की सदाशयता और उदारता के प्रति वो उतने ही आश्वस्त हैं। आश्रम और प्रकृति की शोभा देख भरत के मन में वैसे ही आनंद का संचार होता है जैसे भूखे व्यक्ति को श्रेष्ठ भोजन प्राप्त करने पर होता है। रमणीय वन, सुहावनी पर्वत श्रृंखला, मुनियों के मनोरम निवास स्थान, वन प्रांतर के पशु पक्षी मन में एक सुखद साम्राज्य की कल्पना जगाते हैं। एक ऐसा परिवेश जहां केवल आनंद और मंगल की सृष्टि हो रही है। निषाद राज एक ऊंचे भूखंड पर चढ़कर भरत को श्री राम का आश्रम दिखाते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम कृषि सामयिकी। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे इस सप्ताह की कृषि सलाह।
1: जुलाई माह का यह दूसरा सप्ताह है, इसमें महत्वपूर्ण कृषि कार्यों के लिए हम आपको बता दें कि खरीफ में इस क्षेत्र में मुख्य रूप से धान, सोयाबीन, मूंग, उर्द, तिल, गन्ना, अरहर, मक्का और सब्जियां हम लेते हैं। तो हमारे क्षेत्र में धान में दो तरह की बुआई प्रचलित होती है, एक तो सीधे बीज की बोनी की जाती है और दूसरा कतारों में करते हैं और रोपणी के द्वारा करते हैं। इस समय सीधी बोने वाले खेतों में खरपतवार बहुत होंगे तो उनका नियंत्रण बहुत जरूरी है। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हों तो दवा छिड़के। जहां पर कतार में बुआई की गई है वहां पर ताइचुंग गुरमा चलाकर नींदा को नियंत्रित करें। जिन खेतों में रोपणी करना है उन खेतों में पानी भरकर ऐसी जुताई करें कि खरपतवार पलट कर नीचे दब जाएं। इन खेतों में दो तीन दिन के बाद पर पडलर चलाकर मचहुआ करते रहें। इसके बाद खेत में पाटा चलाकर समतल कर लें और सामान्य तौर पर 3-4 सप्ताह के धान

0: के पौधे रोपाई के लिए अच्छे होते हैं। इन्हें 20 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी और 15 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखते हुए 3 से 4 पौधे एक जगह पर रोप दें। इसके अलावा मेडागास्कर या SRI पद्धति भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये बहुत उत्तम पद्धति है। इसमें बीज की मात्रा बहुत कम लगती है। इसमें रोपाई के लिए पौधों की अवस्था 12 से 15 दिन ही काफी होती है और 25 सेंटीमीटर कतार से कतार और पौधे से पौधे की दूरी रखी जाती है। इस विधि से उत्पादन भी बहुत अधिक मिलता है। इस समय में सोयाबीन की अवस्था 10 से 20 दिन की हो गई होगी, जिन किसान भाइयों ने पहले बोया होगा। अब जब वर्षा हो रही हो तो जल निकास की व्यवस्था अवश्य करें सोयाबीन में, अन्यथा नुकसान हो सकता है। फसल में खरपतवार हो तो उनका कुल्फा, डोरा या खुरपी इत्यादि से इनका नियंत्रण कर सकते हैं। सोयाबीन की खड़ी फसल में यदि निंदा का नियंत्रण करना है तो क्यूजालोफॉप या इमेजीथापिर नामक रसायनों का उपयोग आप कर सकते हैं। फसल की 15 से 20 दिन की अवस्था में ही इनका उपयोग करना है। इस समय उड़द और मूंग की बुआई कर लेना चाहिए। खेत अच्छी तरह से तैयार करें और जल निकास की अच्छी व्यवस्था रखें। भूमि जनित बीमारियों से बचाव करने के लिए दवा को लेकर बीज को उपचारित करें। इस समय में तिल की बुआई के लिए अच्छा समय है। तिल को भी भूमि जनित बीमारी से बचाने के लिए फफूंदनाशक दवाओं से उपचारित करके ही बोना चाहिए। इस समय सभी फसलों में जल प्रबंध की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, यानी अगर बीच में सूखे की स्थिति हो तो सिंचाई अवश्य करें। इसके विपरीत यदि अधिक वर्षा हो तो जल निकास की व्यवस्था अवश्य करें। खरपतवार का नियंत्रण करें। खड़ी फसल जैसे कि धान, गन्ना, मक्का, ज्वार, बाजरा में यूरिया का छिड़काव अवश्य करें। अब बात रही फलों की, तो फलों में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए पौधों की उम्र के अनुसार उर्वरक दें। इस समय आम, अमरूद, अनार, नींबू, इसमें पौध तैयार करके लाभ कमाया जा सकता है। आंवला जैसे फल वृक्षों में कलिकायन क्रिया भी अभी की जा सकती है। अमरूद में तना छेदक कीट से बचाने के उपाय आपको करने होंगे। इस समय टमाटर, बैंगन, मिर्च और अगेती फूलगोभी की रोपाई भी आप कर सकते हैं। रोपाई के तुरंत बाद यदि पानी ना हो तो हल्की सी सिंचाई कर दें। कद्दू वर्गीय सब्जियों के लिए खेत में प्रारंभिक उर्वरक डालकर बुआई करें। सब्जियों को कीट और रोगों से बचाने के लिए अनुशंसित दवाओं का उपयोग अवश्य करें। अब हम पशुपालन की बात करें तो पशुओं के स्वास्थ्य के लिए और दुधारू पशुओं के उत्पादन के लिए हरा चारा बहुत जरूरी होता है। इस सप्ताह चारा वाली फसलें जैसे कि मक्का, ज्वार और लोबिया की बुआई कर दें। गायों में गोमाता रोग और बकरियों में CCPC का टीका अवश्य लगवाएं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि सामिकी। इसमें आपने इस सप्ताह की कृषि सलाह सुनी। अब ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे स्पॉटलाइट कार्यक्रम, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात्रि 9:30 पर सुनिए धारावाहिक हंसना मना है और रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम।

सवेरे 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर। लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रसधार सुनिए सवेरे 9 बजे। इस कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार हैं शीतल प्रसाद चढ़ार, और शाम 6:30 पर आप आनंद लेंगे लोक संगीत का। सवेरे 8:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, जिसे हम अपने भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।

सवेरे 10:05 पर आप सुनेंगे वंदे मातरम गौरव गान की 150वीं। 10:10 पर सुनिए विश्व दर्पण, ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सवेरे 10:20 पर आप आनंद लेंगे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सारंगा का। शाम 7:21 पर किसान भाई सुनेंगे कार्यक्रम कृषि जगत।

शाम 6 बजे सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। रात 10:30 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए शाम 5:33 पर और रात्रि 8:15 पर।

अभी आप सुन रहे थे हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। अब से कुछ ही पलों बाद आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: मन्त्रालयः अवदत् यत् भयोत्पादनं विद्रोहः मादकद्रव्याणां क्रयविक्रयणं शस्त्राणां क्रयविक्रयणं मानवव्यापारं वन्यजीवानां क्रयविक्रयणम् इत्यादीनां सङ्घटितानाम् अपराधप्रकाराणां निवारणार्थं सहकारिताविषये उभयपक्षौ चर्चां कृतवन्तौ। भारत रूस देशाभ्याम ह्यः संयुक्त राष्ट्र ब्रिक्स यूरेशियन समूह शंघाई सहयोग संघटनानि समेत्य बहुपाक्षिक मंचेषु आतंकवादरोधी सहयोगम इतोपि सुदृढीकरणस्य प्रतिबद्धता पुनरुद्घाटिता। भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूहस्य चतुर्दशोपवेशनम ह्यः नवदिल्ल्यां आयोजितमासीत्। द्वौ देशौ सीमापारे आतंकवादं समेत्य आतंकवादस्य सर्वेषां रूपाणां अभिव्यक्तिनां च निन्दां कृतवन्तौ। भारतीयान्तरिक्ष अनुसन्धान संघटनं मध्यप्रदेशस्य श्योपुरनगरस्य एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट इत्यस्य ड्रॉप जोन इत्यत्र गगनयान उपक्रमस्य कृते महत्वपूर्णं एकीकृतं IMAT इति परीक्षा सफलतया आयोजिता। भारतर्तु विज्ञान विभागेन उक्तं यत् आगामिषु त्रिषु दिनेषु नैऋत्य प्रावृषे उत्तर अरब सागर राजस्थाने गुजरात हरियाणा पंजाब इत्येतेषां शेष भागेषु अग्रे गन्तुं स्थितिः अनुकूलः अस्ति। अद्य अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय बिहार पूर्व राजस्थान मध्य प्रदेश उप हिमालयीय पश्चिम बंगाल सिक्किम पश्चिमोत्तर प्रदेशानां केषुचित् भागेषु प्रचंड वृष्टिः भविष्यति इति ऋतु विभागेन पूर्वानुमानितम्। जम्मू कश्मीर प्रशासनेन ह्यः श्री अमरनाथजी यात्रामुद्देश्य एका नवीना निर्देशिका प्रसारिता, यस्यां सर्वहि तीर्थयात्रिभिः पंजीकरण प्रक्रियायाः अथ सुरक्षा मार्गदर्शिकानां निष्ठापूर्वकं दृढतापूर्वकञ्च पालनं कर्तुं समादिष्टम्। आकाशवाण्याः जम्मू वार्ताहरैः विज्ञापितं यत् सर्वोच्च न्यायालयस्य निर्देशानुसारं निर्धारिता यात्रणां प्रतिदिनस्य संख्या सीमा सम्प्रत्योपि पूर्णतो प्रवृत्ता वर्तते। श्रद्धालवः परामृष्टाः यत् यात्रा प्रारम्भात् एव पूर्वमेव अग्रिम पञ्जीकरणं करणीयम् अथ अनुमतिपत्रे उल्लिखिते दिनांके एव यात्रा आरम्भणीया। प्रशासनेन स्पष्टीकृतं यत् अनुपदमेव पञ्जीकरणस्य सुविधा अत्यन्तं सीमितसंख्यासु एव उपलब्धा अस्ति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी आधिकारिक मंच को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापारिक साझेदारियों को हमें ऊंचाइयों पर ले जाना है।
2: भारत आपके फंड्स को सेफ स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स में दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने किप सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क को मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री ने मेलबर्न में भारतीय समुदाय को गर्मजोशी से स्वागत के लिए उनका आभार व्यक्त करते हुए इसे अविस्मरणीय बताया। ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने कहा कि एक दशक में श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में हुई महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था

0: व्यवस्था बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2026 के दौरान इसकी 7% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। IMF ने यह भी अनुमान जताया है कि अगले वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर कुछ घटकर 6.4% रह सकती है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत भी मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक नकदी रहित चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत 15 लाख से अधिक शिक्षण कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा उपचार मिलेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश में कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकता है। नई दिल्ली में सत्रहवें कृषि नेतृत्व सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य पालन के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करेंगे। श्री राधाकृष्णन ओडिशा डीप सी फिशिंग मिशन दस्तावेज का भी विमोचन करेंगे और इसके बाद उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान खुर्दा के 15वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। अमेरिका ने ईरान पर फिर हवाई हमले किए हैं। ये हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के फिर से किए गए हमलों को दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की समाप्ति के बाद किए गए हैं। केरलम के 5 उत्तरी जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जिलों में अगले 36 घंटों के दौरान तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं राजधानी दिल्ली में रात से ही लगातार बारिश हो रही है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का 4th मुकाबला आज ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। इससे पहले 3rd मैच में भारत को इंग्लैंड से 125 रन से हार का सामना करना पड़ा था। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi will hold talks with his Australian counterpart Anthony Albanese in Melbourne today. Discussions between the two leaders are expected to focus on strengthening cooperation in trade, defence, critical technologies, education and people-to-people ties. His visit is expected to provide fresh momentum to the India-Australia Comprehensive Strategic Partnership. Prime Minister Modi participated in the India-Australia CEOs Forum in Melbourne this morning and addressed business leaders from both the countries.
2: भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने किप सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
1: Mr. Modi arrived in Melbourne yesterday evening on a 3-day visit to Australia at the invitation of Australian Prime Minister. PM Modi arrived in Melbourne from Indonesia in the second leg of his 3-nation tour. Centre has approved the procurement of copra and Totapuri mangoes from farmers in Tamil Nadu to safeguard farmers' interests. Ministry of Agriculture and Farmers Welfare said this will ensure better price realisation for producers and protect them from distress sales caused by market fluctuations. The approval is based on the proposals submitted by Tamil Nadu,

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से करेंगे बातचीत। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, 3 दशक से जारी सरदार सरोवर विवाद का सर्वसम्मति से हुआ समाधान। आज भिंड में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट, प्रदेश के 9 जिलों में अति भारी और 11 जिलों में भारी बारिश की संभावना। और भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का 4था मुकाबला आज ब्रिस्टल में होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क में सहयोग मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की संभावना है। प्रधानमंत्री

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भाग लेने और दोनों देशों के उद्योग जगत के प्रमुखों को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। वे मेलबर्न में प्रवासी भारतीयों से बातचीत भी करेंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर 3 दिन की यात्रा पर कल शाम मेलबर्न पहुंचे। प्रधानमंत्री ने मेलबर्न में भारतीय समुदाय के गर्मजोशी से स्वागत के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त किया और इसे अविस्मरणीय बताया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के चालू वित्त वर्ष में 7% की वृद्धि दर के अनुमान के साथ भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में अपना स्थान बरकरार रखे हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत के वृद्धि अनुमान वैश्विक अनुमानों से दोगुने से भी अधिक हैं। रिपोर्ट में इस वर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 3% बताई गई है। इसमें अगले वर्ष 3.4% की वृद्धि की उम्मीद है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र मध्य प्रदेश की औद्योगिक शक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव कल धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में किसान इरिगेशन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की चौथी नवीन विनिर्माण इकाई का लोकार्पण कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि किसान इरिगेशन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जैसी कंपनियां प्रदेश में निवेश, रोजगार और तकनीकी प्रगति को नई दिशा दे रही हैं। मुख्यमंत्री ने कंपनी प्रबंधन को शुभकामनाएं देते हुए संबोधित किया।
1: 10,000 करोड़ से ज्यादा अलग किसान कल्याण वर्ष में किसान की इंडस्ट्री हो या रेलवे, अब बहुत तेज गति से माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अलग प्रकार की दुनिया में पहुंच रही है। ऐसे में हमारे उद्यमी सागोदी ब्रदर्स ने अपनी रेल के विभिन्न प्रकार की एक्सेसरीज बनाने का और रेलवे कोच बनाने तक का भी जो संकल्प लिया। हमारी मल्टीनेशनल कंपनियों के माध्यम से 272 करोड़ के अलग अलग प्रकार के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में कंस्ट्रक्शन में काम आने वाली सभी प्रकार के वाहन साधनों की एक बड़ी इंडस्ट्री का भी हमने लोकार्पण किया है। बीते 10 दिन के अंदर लगभग 10,000 करोड़ से ज्यादा अलग अलग प्रकार के कामों का भूमिपूजन लोकार्पण किया है।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि जल सुरक्षा को सुदृढ़ करने और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। उन्होंने कल कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की उपस्थिति में हुई बैठक में गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सरदार सरोवर परियोजना से जुड़े लगभग 3 दशक से जारी पुनर्वास एवं पुनर्बसाहट व्यय विवाद का सर्वसम्मति से समाधान हुआ है। इस निर्णय से मध्य प्रदेश पर पड़ने वाले वित्तीय भार में उल्लेखनीय कमी आएगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा 24 जून से संचालित 15 दिवसीय प्रदेशव्यापी सेफ क्लिक साइबर सुरक्षा 2.0 जन जागरूकता अभियान का कल समापन हुआ। भोपाल में आयोजित समापन समारोह में मुख्य अतिथि पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना ने कहा कि 3 पूर्व प्रमुख चुनौतियों साइबर अपराध, नशे के विरुद्ध जन जागरूकता और सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता के संकल्प के अनुरूप मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा सेफ क्लिक तथा नशे से दूरी है जरूरी व्यापक जन जागरूकता अभियान सफलतापूर्वक संचालित किए गए हैं।
3: वर्ष 2025 में हमने सेफ क्लिक अभियान साइबर जागरूकता का चलाया था और उसके काफ़ी अच्छे परिणाम देखे गए थे। उसके पश्चात प्रदेश में डिजिटल अरेस्ट में बहुत हद तक रोक लग गई थी, तो चूंकि साइबर फ्रॉडस्टर्स लगातार अपनी मॉडस ऑपरेंडी, अपनी कार्यप्रणाली चेंज करते हैं, तो उनसे बचाव के लिए पब्लिक को जागरूक करना महसूस किया जा रहा था। सेफ क्लिक 2.0 का 24 जून को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका शुभारंभ किया था और 15 दिवसीय ये अभियान सारे जिलों में बहुत ही लगन से, मेहनत से चलाया गया। इसमें कई विभाग, कई संगठन, कई NGOs को हमने जोड़ा और करोड़ों की रीच इसकी रही।
0: 15 दिवसीय इस अभियान का समापन समारोह खंडवा के पुलिस कंट्रोल रूम में भी आयोजित किया गया। वहीं मंडला, आगरमालवा, झाबुआ समेत अन्य जिलों में भी अभियान का समापन समारोह आयोजित किया गया। प्रदेश मंत्रिपरिषद ने मध्य प्रदेश स्टेट डाटा सेंटर के विस्तार और अद्यतन डाटा सेंटर 3.0 परियोजना के लिए 800 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कल हुई कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया। कैबिनेट की मंजूरी के अनुसार मध्य प्रदेश स्टेट डाटा का आधुनिकीकरण, IT एवं डिजास्टर रिकवरी क्षमता विस्तार तथा संबंधित नॉन IT अवसंरचना विकास किया जाएगा। प्रदेश में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं मध्य प्रदेश शासन की संयुक्त भागीदारी से भोपाल में स्टेट डाटा सेंटर की स्थापना की गई है। प्रदेश स्टेट डाटा सेंटर 12

दिसंबर 2012 से सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा उप निरीक्षक एवं सूबेदार भर्ती परीक्षा 2025 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस को 8 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद सूबेदार एवं उप निरीक्षक संवर्ग के 436 पुलिस अधिकारी मिलने जा रहे हैं। मंडल द्वारा 7 जुलाई को अंतिम परीक्षा परिणाम अपनी वेबसाइट पर घोषित किया गया, जिसमें 87% पदों का परिणाम जारी किया गया है, जिसमें कुल 436 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। इनमें 313 पुरुष एवं 123 महिला अभ्यर्थी शामिल हैं। प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सभी शासकीय, अशासकीय एवं निजी महाविद्यालयों में रिक्त सीटों पर अधिक से अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश उपलब्ध कराने के लिए 8 से 15 जुलाई तक प्रवेश मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को एक ही स्थान पर पंजीयन, च्वाइस फिलिंग, संशोधन, दस्तावेज सत्यापन, सीट आवंटन संबंधी मार्गदर्शन तथा शुल्क भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। अब रुख करते हैं क्रिकेट का। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का 4वां मुकाबला आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार यह मैच रात 10 बजे शुरू होगा। इंग्लैंड श्रृंखला में फिलहाल 2-0 से आगे है और श्रृंखला में बने रहने के लिए भारत को यह मैच जीतना ही होगा। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग के अनुसार कल पन्ना, छतरपुर और खंडवा सहित कई जिलों में कुछ स्थानों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए। मौसम केंद्र के अनुसार प्रदेश में अगले 3 दिनों तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। विभाग ने आज भिंड जिले में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं राजगढ़, रतलाम, आगरमालवा, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, मुरैना, टीकमगढ़ और निवाड़ी में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। इसी के साथ विदिशा, उज्जैन, शाजापुर और मंदसौर सहित 11 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए जिला स्तरीय समिति की बैठकें जिला पंचायत सभागार में 13 से 15 जुलाई और 21 से 24 जुलाई तक होंगी। गुना की तहसील कुमराज के ग्राम बिरियाई में जिला प्रशासन द्वारा ग्राम चौपाल और सामाजिक संवाद सह रोजगार उन्मुख सम्मेलन का आयोजन किया गया। मानसून की सक्रियता के चलते जबलपुर के रानी अवंतीबाई सागर परियोजना बरगी जलाशय में बीते 5 दिनों में बांध का जलस्तर 3 मीटर बढ़ गया है। 31 जुलाई से पहले बांध के गेट खोले जा सकते हैं। शहडोल संभाग कमिश्नर ने ग्राम पंचायत मोहतरा के पोषक ग्राम चुनपथरी स्थित एकीकृत शासकीय माध्यमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष डॉ. अवधेश प्रताप सिंह ने इंदौर रेजिडेंसी कोठी पर आयोग मित्रों के साथ मानवाधिकार संरक्षण सहित महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। मंडला जिले में 9 जुलाई को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सांची जनपद के ग्राम सनखेड़ी में 2,90,00,000 रुपये की लागत से बने क्षमता के नए उपकेंद्र का लोकार्पण किया। सांची विधायक डॉ. प्रभुराम चौधरी भी मौजूद रहे और बैतूल कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने प्रभात पट्टन तहसील के ऐतिहासिक शेरगढ़ किले और वर्धा डैम पहुंचकर सुरक्षा एवं पर्यटन व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

0: या
1: आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर।

श्रोताओं, आज हम बात करेंगे रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम यानी भूजल संरक्षण की। जल है तो कल है, ये केवल एक नारा नहीं बल्कि मानव जीवन का एक शाश्वत सत्य है।

पृथ्वी पर उपलब्ध मीठे जल का एक बड़ा भाग भूजल के रूप में हमारे नीचे सुरक्षित रहता है। यही भूजल हमारे पीने, खेती उद्योग और दैनिक जीवन की अनेक आवश्यकताओं को पूरा करता है।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सो योर प्लेस और माइन,
4: उसके पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डम है?
3: कॉन्डम? लेकिन हम तो
4: क्या हुआ, ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
3: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
5: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
6: वर्षा के पानी को नालियों में बह जाने देने के बजाय उसे भूमि में उतारने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सबसे बेहतर विकल्प है। घरों, विद्यालयों, कार्यालयों और सार्वजनिक भवनों में वर्षा जल संचयन प्रणाली अपनाकर भूजल स्तर को बढ़ाया जा सकता है और पानी की बर्बादी को रोका जा सकता है।

कृषि क्षेत्र में जल संरक्षण के लिए टपक यानी ड्रिप और फव्वारा यानी स्प्रिंकलर सिंचाई जैसे आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे हम पानी को बर्बाद होने से बचा सकते हैं।

शहरों में अनावश्यक जल बर्बादी रोकना, रिसते हुए नलों की मरम्मत करना और पुनर्चक्रित जल का उपयोग बढ़ाना समय की मांग है।

विद्यालयों में बच्चों को जल बचाने की आदत सिखाई जानी चाहिए। यदि प्रत्येक परिवार रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम अपनाए और जल का सोच समझकर उपयोग करे तो हम भूजल संकट को काफी हद तक कम कर सकते हैं। हमें संकल्प लेना चाहिए कि जल की हर बूंद का सम्मान करेंगे और वर्षा जल का संरक्षण करेंगे। आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित जल भविष्य का निर्माण तभी होगा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर। अब ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। अपनी दोस्त और होस्ट मंजरी शुक्ला को इजाजत दीजिए।

आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। अब से कुछ ही देर बाद आप क्रमशः हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा संकट वाले दौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया का भरोसेमंद साझेदार के तौर पर आगे बढ़ना स्वाभाविक और जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किसानों के हित में खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2026 में 7% की विकास दर रहने का अनुमान जताया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम खत्म होने की घोषणा के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हमले किए और भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रचा। पिछले 36 वर्षों में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने आज सुबह मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भाग लिया।

0: दोनों नेताओं ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के उद्योग जगत के प्रमुखों से भी मुलाकात की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अनिश्चितता, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए स्वाभाविक और विश्वसनीय साझेदार के रूप में आगे बढ़ना स्वाभाविक है और आवश्यक भी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों ने अपनी शक्तियों का लाभ उठाते हुए भविष्य की साझेदारी के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में रिकॉर्ड समय में संपन्न हुए आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में मजबूती आई है।
1: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, खनन, अवसंरचना, शहरी विकास, विमानन, रसद, उन्नत प्रौद्योगिकी, AI, खाद्य प्रसंस्करण और डिजिटल अर्थव्यवस्था क्षेत्रों में भारत में उपलब्ध विशाल अवसरों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के निवेशकों को भारत में दीर्घकालिक निवेश के अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया।
1: भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने गिफ्ट सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी मेलबर्न में प्रवासी भारतीयों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम मेलबर्न पहुंचे थे। ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने कहा है कि एक दशक में श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में हुई महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है।
2: तीसरा एनुअल लीडर्स समिट भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इस वर्ष और पिछले सालों में जो आपने देखा कि जो एक पूरे विश्व में एक हल्का सा तनाव है, चाहे युद्ध का है, जो डिस्प्यूट्स हैं, जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, उस संदर्भ में इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है हमारी रिलेशनशिप को उस क्षेत्र में जिसको हम लोग इंडो पैसिफिक बोलते हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत मिलेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि

0: स्वीकृत खरीद का कुल एमएसपी मूल्य 1,000 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना एमआईएस के तहत इस वर्ष तमिलनाडु में 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आमों की खरीद को भी मंजूरी मिल गई है। यह खरीद एमआईएस के तहत की जाएगी, जिसमें बाजार हस्तक्षेप मूल्य 1,000 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक निर्धारित किया गया है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किसानों के हितों की रक्षा और उनका विश्वास बहाल करने के लिए तंबाकू कंपनियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तंबाकू की खरीद प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया है। अमरावती स्थित सचिवालय में अधिकारियों और व्यापारियों के साथ तंबाकू खरीद की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तंबाकू की कीमत 200 रुपये प्रति किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कंपनियों से नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक नकदी रहित चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत 15 लाख से अधिक शिक्षण कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा उपचार मिलेगा। और ब्यौरे के साथ हैं हमारे संवाददाता।
2: इस योजना के तहत राज्य भर के शिक्षकों और उनके परिवारों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से जुड़े लगभग 15 लाख शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी इस योजना से लाभान्वित होंगे। नियमित शिक्षकों के अलावा इस योजना से शिक्षा मित्रों, प्रशिक्षकों, रसोइयों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के पात्र कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। शिक्षकों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने शिक्षकों के स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा करने के अपने वायदे को पूरा किया है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए ये व्यापक सामाजिक सुरक्षा और बीमा कार्यक्रम देश में अपनी तरह की पहली पहल है। इस योजना के तहत 10,000 रुपए से ज्यादा मासिक वेतन पाने वाले संविदा कर्मचारियों को 30 लाख रुपए से 80 लाख रुपए तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2026 के दौरान इसकी 7% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। IMF ने यह भी अनुमान जताया है कि अगले वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर कुछ घटकर 6.4% रह सकती है। अमरीका ने ईरान पर फिर हवाई हमले किए हैं। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमला करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि अमरीकी हमले जवाबी कार्रवाई में किए गए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने फिर हमले किए तो अमरीका इसका और कड़ा जवाब देगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा हिमालय के निचले इलाकों, सिक्किम और पश्चिम उत्तर प्रदेश में दिन में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में भी आज इसी तरह के मौसम की संभावना है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में रात से ही बारिश हो रही है। दिन में भी शहर में ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जिलों में अगले 36 घंटों के दौरान तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। हमारी संवाददाता ने बताया कि राज्य में कल रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। केरलम के 5 उत्तरी जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में येलो अलर्ट पहले से ही जारी है। इन जिलों में कल रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में लड़कों के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। पिछले 36 वर्षों में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले वे भारत के पहले खिलाड़ी हैं। 18 वर्षीय पापरकर ने प्री क्वार्टर फाइनल में जापान के रियो ताबाता को मात्र 52 मिनट में 6-2, 6-1 से हराया। पापरकर का अगला मुकाबला आज शाम 5 बजे क्वार्टर फाइनल में अमेरिका के जॉर्डन ली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
3: धन्यवाद।

0: देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने ईरान अमेरिका युद्ध विराम खत्म होने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान और बारिश के चलते देश में प्रभावित जनजीवन के समाचारों को सुर्खियों में जगह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा का समाचार भी कई अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने इंडोनेशिया के प्रम्बानन मंदिर में पूजा अर्चना करते प्रधानमंत्री का चित्र सबसे ऊपर छापा है। खबर को शीर्षक दिया है, इंडोनेशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर में मोदी ने की पूजा। वीर अर्जुन ने इस खबर को प्रधानमंत्री के इस बयान के साथ प्रकाशित किया है कि सांस्कृतिक विरासत हमें जोड़ती है। देश बंधु की सुर्खी है, इंडोनेशिया के सबसे बड़े शिव मंदिर में पहुंचे मोदी। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय से स्वागत स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री का चित्र भी कुछ अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत के ढहने के समाचार को देश भर में भवन निर्माण संबंधी अनियमितताओं के मामले से जुड़ी स्थिति का विश्लेषण प्रकाशित किया है। पत्र का कहना है कि नियमों का उल्लंघन कर लोग 5 से 6 मंजिला भवन बना रहे हैं। स्थिति को सुधारने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए ताकि ऐसी अप्रिय घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। लोकसत्य ने नौकरी पेशा पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी शीर्षक से पीएफ खाते में 8.25% की दर से ब्याज देने की सरकार की घोषणा को प्रकाशित किया है।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा संकट वाले दौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया का भरोसेमंद साझेदार के तौर पर आगे बढ़ना स्वाभाविक और जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किसानों के हित में खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम खत्म होने की घोषणा के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हमले किए और भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर रचा है इतिहास। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi addresses India-Australia CEOs Forum in Melbourne, says it is natural and essential for India and Australia to move forward as trusted partners in a world marked by uncertainty, supply chain disruptions and energy crisis. Prime Minister Modi to also hold talks with his Australian counterpart Anthony Albanese in Melbourne today. Centre approves procurement of Khopra and Totapuri mangoes from farmers in Tamil Nadu to safeguard farmers' interests. Uttar Pradesh government launches cashless health scheme for teachers as well as non-teaching staff in the state. IMF projects India to remain world's fastest growing major economy with 7% growth this year. US launches new strikes on Iran after President Donald Trump said ceasefire is over. And India's Arnav Paparkar creates history by becoming first Indian in 36 years to reach boys singles quarterfinals at Wimbledon Juniors 2026. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese participated in the India-Australia CEO Forum in Melbourne this morning. Both leaders also met the leading business leaders from India and Australia. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi said the world is currently navigating a period marked by uncertainty, supply chain disruptions and energy crisis. He said that in such times, it is both natural and essential for India and Australia to move forward as natural and trusted partners. The Prime Minister further said economic cooperation and trade agreement concluded in record time in 2022 has further strengthened the economic ties between the two countries.
3: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों

0: देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है।
1: Prime Minister Modi also noted the complementarities between the Indian and Australian economies, underlining vast opportunities available in India across a number of sectors.
0: हमारी पार्टनरशिप केवल दोनों राजधानियों या कुछ शहरों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। हमें हमारे राज्यों, छोटे बड़े शहरों, विश्वविद्यालयों, उद्योगों, सभी के स्टेक होल्डर्स बनाना होगा। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की क्रिटिकल मिनरल स्ट्रेंथ, उसको हम उड़ीसा और गुजरात की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी के साथ जोड़ सकते हैं। क्वींसलैंड और टेस्मेनिया की क्लीन एनर्जी और एग्रीकल्चर एक्सपर्टीज, पंजाब और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के रिन्यूएबल कॉरिडोर्स और फूड प्रोसेसिंग इकोसिस्टम को नई गति दे सकते हैं।
1: Mr. Modi invited Australian investors to take advantage of opportunities for long-term investments in the country and also welcomed the growing presence of Australian universities in India.
0: भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने गिफ्ट सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
1: Following the CEO's forum, Prime Minister Modi also addressed the Economic Roadmap Business Event, a large gathering of over 200 CEOs and business leaders from both sides. Speaking about natural synergies between India and Australia, he highlighted that shared democratic values, a common vision for the Indo-Pacific, vibrant people-to-people ties and strong political understanding created fertile ground for the business partnership between the two countries to grow and prosper together.
0: लोकतांत्रिक मूल्यों और इंडो पैसिफिक साझा विजन के आधार पर हमारे बीच गहरा स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस बना है। हम अपनी बिजनेस पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रयास में आप सभी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि आज का ये संवाद नए आइडियाज, नई पार्टनरशिप और नए कमिटमेंट्स को जन्म देगा।
1: Now we go over to our Melbourne correspondent who is sharing more details on the Prime Minister's visit.
2: The India-Australia CEOs Forum marked a decisive shift from parallel diplomatic tracks to an integrated, future-proof economic engine. Prime Minister Modi signaled a new era of decentralized economic diplomacy, calling for direct state-to-state corridors that link Australia's raw resources directly with India's massive clean energy, chip manufacturing and digital infrastructure pipelines. Echoing this vision, Prime Minister Albanese mapped out massive capital commitments, anchored by Australian super's multi-billion dollar investments, unprecedented higher education partnerships and landmark industrial projects like the Perdaman plant. Together, both leaders made it clear that while policy sets the runway, it is a direct synergy of our corporate titans and the unstoppable aspiration of 1 million strong diaspora that will pilot this relationship to its $100 billion target. Suhas Ram, Akashvani News, Melbourne.
1: Moreover, Prime Minister Modi will hold talks with his Australian counterpart Anthony Albanese in Melbourne later today. Discussions between the two leaders are expected to focus on strengthening cooperation in trade, defence, critical technologies, education and people-to-people ties. Mr. Modi arrived in Melbourne yesterday evening on a three-day visit to Australia at the invitation of Australian Prime Minister. PM Modi arrived in Melbourne from Indonesia in the second leg of his three-nation tour. The Prime Minister thanked the Indian community in Melbourne for the warm welcome accorded to him, describing the reception as truly unforgettable. Braving that winter chill, members of the Indian diaspora gathered in large numbers outside the Prime Minister's hotel, greeting him with chants of Bharat Mata Ki Jai and Modi Modi. The welcome also featured cultural performances by local artists. The Prime Minister also praised the Australian India Orchestra for its rendition of Maa Tujhe Salaam, saying the performance reflected the role of music in strengthening people-to-people ties between the two countries. The centre has approved the procurement of Khopra and Totapuri mangoes from farmers in Tamil Nadu to safeguard farmers' interests. Union Agriculture and Farmers Welfare Ministry said this will ensure better price realization for producers.

यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। अब आप सुनेंगे स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग।

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि मंगेई गोमांगो का जन्म कब हुआ था। इसका सही जवाब है 16 जून। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, दिल्ली से सुब्बलक्ष्मी और लखनऊ से डॉक्टर प्रियदर्शनी चक्रवर्ती। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूरवीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

तक पहुंची, बल्कि उसकी जड़ों में अनगिनत अनाम तपस्वियों का रक्त भी समर्पित है जिससे ये फला फूला। ऐसे ही एक महान क्रांतिकारी थे सीतांशु दत्त रॉय। युगांतर दल के इस निर्भीक सेनानी ने स्वाधीनता को केवल स्वप्न नहीं अपना जीवन व्रत बनाया और इस पुण्य यात्रा में उन्होंने अनगिनत कष्ट सहे, लेकिन उनके मन में जलती क्रांति की ज्वाला कभी मंद नहीं पड़ी। सीतांशु दत्त रॉय का जन्म 1 जुलाई 1907 को बंगाल प्रेसिडेंसी के मैमनसिंह जिले के ढाकी नामक गांव में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में पड़ता है। उनके पिता का नाम शिवदत्त रॉय था। ये 20वीं शताब्दी का उषाकाल था। भारत पर अंग्रेजी साम्राज्य का कठोर शासन था और बंगाल की धरती क्रांति की ज्वाला से धधक रही थी। बंग भंग आंदोलन ने लोगों को झकझोर कर जगा दिया था। स्वदेशी आंदोलन जन जन की चेतना बन चुका था। ऐसे वातावरण में सीतांशु दत्त रॉय बड़े हो रहे थे। उनके पिता स्वयं राष्ट्रवादी विचारों से ओतप्रोत व्यक्ति थे, इसलिए सीतांशु दत्त रॉय के भीतर भी स्वाभाविक रूप से राष्ट्र चेतना जागृत होने लगी। ढाका, मैमनसिंह और बारिसाल जैसे जिले गुप्त क्रांति गतिविधियों के सबसे बड़े गढ़ बन चुके थे। क्रांतिकारी दल युगांतर की गतिविधियां लगातार जारी थीं। इसी बीच सीतांशु दत्त रॉय का संपर्क युगांतर के क्रांतिकारियों से हुआ और वो युगांतर के उद्देश्य से बहुत अधिक प्रभावित हुए और इस संगठन के सक्रिय सदस्य के रूप में कार्य करने लगे। उनके भीतर केवल एक संकल्प था, संकल्प भारत की आजादी का।

युगांतर सशस्त्र क्रांति की मशाल लिए आगे बढ़ रहा था। इस दल का उद्देश्य केवल शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि ये अखाड़ों के माध्यम से युवाओं को शारीरिक रूप से सशक्त बनाता था। इतना ही नहीं, यहां युवाओं को हथियारों का प्रशिक्षण भी दिया जाता था। ये संगठन क्रूर ब्रिटिश अधिकारियों को अपना निशाना बनाता था। उन दिनों अंग्रेजी शासन की खुफिया पुलिस संगठन की हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखती थी। क्रांतिकारियों की एक छोटी सी भूल भी उनके आजीवन कारावास का कारण बन सकती थी। लेकिन भारत की स्वाधीनता का स्वप्न देखने वाले क्रांतिकारियों के मन में किसी भी बात का भय नहीं था। सीतांशु दत्त रॉय ऐसे चुनौतीपूर्ण वातावरण में भी निर्भीक होकर क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न रहा करते थे। वो मैमन सिंह, नेत्रकोना और किशोरगंज के क्षेत्रों में संगठन का विस्तार करने में जुट गए। वो कभी एक स्थान से दूसरे स्थान तक गुप्त संदेश पहुंचाते, कभी क्रांतिकारियों के लिए सुरक्षित ठिकाने की व्यवस्था करते। पुलिस की निगरानी के बीच क्रांतिकारियों तक हथियार पहुंचाना एक कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य था। सीतांशु दत्त रॉय इस काम को भी अत्यंत चतुराई और सतर्कता से अंजाम देते। अत्याचारी अंग्रेज अधिकारियों की

वध की योजनाओं में वो इन अधिकारियों की गतिविधियों पर नजर रखकर आवश्यक सूचना दल तक पहुंचाया करते थे। इतना ही नहीं, वो युवाओं से बातें करते, उन्हें युगांतर का उद्देश्य बताकर भारतीय स्वाधीनता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित करते, उन्हें दल से जोड़ते। ये सारे काम तलवार की धार पर चलने जैसे थे, लेकिन ये सभी जोखिमपूर्ण दायित्व वो पूरी निष्ठा से निभाने में जुटे रहते। इसी बीच सन 1930 में मास्टर सूर्यसेन के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर हमला हुआ। इस घटना ने अंग्रेजी शासन की नींद उड़ाकर रख दी। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के क्रांतिकारियों पर अभूतपूर्व दमन चक्र चलाया। अंग्रेजों का गुप्तचर विभाग अब और अधिक चौकस और सक्रिय हो गया था। युगांतर के अनेक क्रांतिकारियों पर कड़ी नजर रखी जा रही थी, जिनमें सीतांशु दत्त रॉय का नाम भी शामिल था। बिना मुकदमे के गिरफ्तारी, अनिश्चितकालीन नजरबंदी और यातनाएं अंग्रेजी शासन की नीति बन चुकी थी। पुलिस ने बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट यानी BCLA के अंतर्गत सीतांशु दत्त रॉय को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उनके हौसले अब भी बुलंद थे।

बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट एक ऐसा काला कानून था जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को बिना न्यायिक प्रक्रिया के लंबे समय तक बंदी बनाया जा सकता था। इसी कानून के तहत सीतांशु दत्त रॉय को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें हिजली नजरबंदी शिविर भेज दिया गया। हिजली केवल एक सामान्य सी जेल नहीं थी, बल्कि यहां अंग्रेजों की क्रूरता की पराकाष्ठा थी। हिजली नजरबंदी शिविर की स्थापना सन 1930 में इसी उद्देश्य से की गई थी कि स्वाधीनता संग्राम सेनानियों और क्रांतिकारियों को बिना मुकदमे के यहां कैद किया जा सके तथा उन्हें प्रताड़ित किया जा सके। ये वही जेल थी जहां निहत थे राजनीतिक बंदियों पर ब्रिटिश प्रहरियों ने गोली चला दी थी और संतोष कुमार मित्रा और तारकेश्वर सेन गुप्ता जैसे क्रांतिकारी शहीद हो गए थे। इसी जेल में अब सीतांशु दत्त रॉय कैद थे। उन्होंने यहां असीम शारीरिक यातनाएं सही और अपने साथी क्रांतिकारियों के साहस को निकट से देखा। यहां दी गई हर यातना उनके संकल्प को और दृढ़ कर

बढ़ती चली गई। इसी दौरान ब्रिटिश सरकार ने उन पर एक और गंभीर आरोप लगाया। मैमन सिंह की अत्याचारी जिला मजिस्ट्रेट ग्राहम पर क्रांतिकारियों ने जानलेवा हमला किया था। इस हमले में सीतांशु दत्त रॉय को प्रमुख षड्यंत्रकारी बताया गया। आरोप लगाया गया कि उन्होंने इस घटना के लिए हथियार उपलब्ध कराए, योजना बनाई तथा हमले के सूत्रधारों के बीच महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन पर मुकदमा चला। नेत्रकोना की विशेष औपनिवेशिक अदालत में उन्हें प्रस्तुत किया गया। अंग्रेज अधिकारी चाहते थे कि सीतांशु दत्त रॉय अपने साथियों के नाम उजागर कर दें। उनसे बार बार पूछताछ हुई, प्रलोभन दिए गए, दबाव भी बनाया गया, लेकिन वो अडिग रहे। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। अंततः अदालत ने उन्हें 6 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और उनका मनोबल तोड़ने के लिए अंडमान की सेलुलर जेल भेज दिया। यहां की एकांत कोठरी, अल्प भोजन और अमानवीय श्रम के बीच भी उनका संकल्प टूटा नहीं। जब अंडमान की जेल में 24 जुलाई सन 1937 को ऐतिहासिक भूख हड़ताल शुरू हुई तो सीतांशु दत्त रॉय भी इसमें शामिल हुए। कैदियों की मांग थी कि उन्हें राजनीतिक बंदी का दर्जा मिले, अमानवीय व्यवहार बंद हो और उन्हें भारत की मुख्य भूमि में स्थानांतरित कर दिया जाए। इस भूख हड़ताल ने ब्रिटिश हुकूमत को हिलाकर रख दिया। गांधी जी, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर तथा अन्य नेताओं ने हस्तक्षेप किया। सरकार झुकी तथा कैदियों की वापसी की प्रक्रिया शुरू हुई। सीतांशु दत्त रॉय को भी भारत वापस लाया गया और 1938 में वो रिहा हुए। रिहा होने के बाद भी वो शांत नहीं बैठे। भारत छोड़ो आंदोलन में युगांतर और अनुशीलन समिति के क्रांतिकारी भूमिगत रहकर इसमें शामिल हुए। सीतांशु दत्त रॉय को सुरक्षा हेतु खतरा मानते हुए पुनः नजरबंद कर दिया गया था। अंततः देश आजाद हुआ और बंटवारे में उनका गृह जिला मैमन सिंह भारत से अलग हुआ और वो पश्चिम बंगाल आ गए। देश की आजादी के बाद किसी भी प्रकार के राजनीतिक लाभ या पद की लालसा से दूर उन्होंने एक गुमनाम और सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत किया। नमन ऐसे महान देशभक्त को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है कि कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। सवाल एक बार फिर सुन ले, कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com।

0: अभी आप सुन रहे थे स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। यह आकाशवाणी भोपाल है।
1: सूचना हो, समाचार हो या हो सुरताल, सबकी पहली पसंद आकाशवाणी।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भाग लेने और दोनों देशों के उद्योग जगत के प्रमुखों को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र मध्य प्रदेश की औद्योगिक शक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र है। उन्होंने कहा कि किसान इरीगेशन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जैसी कंपनियां प्रदेश में निवेश, रोजगार और तकनीकी प्रगति को नई दिशा दे रही हैं। प्रदेशव्यापी सेफ क्लिक 2.0 अभियान का समापन कल भोपाल में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना ने बताया कि साइबर अपराध, नशे के खिलाफ जागरूकता तथा सड़क सुरक्षा को लेकर जन जागरूकता अभियान सफलतापूर्वक संचालित किए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में कल हुई कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश स्टेट डेटा सेंटर के विस्तार और अद्यतन डाटा सेंटर 3.0 परियोजना के लिए 800 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के महाविद्यालयों में रिक्त सीटों पर अधिक से अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 15 जुलाई तक प्रवेश मेले का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश भर में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज भिंड जिले में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं राजगढ़, रतलाम सहित 9 जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। विदिशा, उज्जैन, शाजापुर सहित 11 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। और भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। ये मैच रात 10 बजे से शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रसधार सुनिए। इस कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार हैं शीतल प्रसाद चढ़ार, आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं सुरेश कुमार पाठक। आइए सुनते हैं सबसे पहले इनके स्वर में देवी जस।

लोक रसधार कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार हैं शीतल प्रसाद चढ़ाल। आइए सुनते हैं उनके स्वर में ये लोक भजन।

अभी आप सुन रहे थे बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रसधार। इस कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार थे शीतल प्रसाद चढ़ार। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे सुरेश कुमार पाठक। अब ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे नाटक, जिसे हम अपने भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रस्तुत है नाटक इंस्पेक्टर जनरल। इसके लेखक हैं निकोलाई गोगोल, प्रस्तुतकर्ता हैं राकेश ढोंडियाल।
1: समन्वित कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है निकोलाई गोगोल का लिखा नाटक इंस्पेक्टर जनरल। हिंदी रेडियो रूपांतरण किया है दिनेश राय ने और प्रस्तुतकर्ता हैं राकेश ढोंडियाल।

0: क्यों ल्यूका ल्यूकिश, बता सकते हैं गवर्नर साहब ने हमें अचानक यहाँ क्यों तलब किया है?
1: पता नहीं कमिश्नर साहब, जाने क्या बात है। लीजिए, वो आ रहे हैं गवर्नर साहब।
0: आदाब गवर्नर साहब।
2: आदाब, आदाब, बैठिए बैठिए। हाँ, मैंने आप सबको एक ऐसी खबर सुनाने को बुलाया है जिसे बुरी खबर भी कहा जा सकता है। इंस्पेक्टर जनरल तशरीफ ला रहे हैं।
0: इंस्पेक्टर जनरल?
2: सेंट पीटर्सबर्ग से कोई इंस्पेक्टर जनरल भेजा गया है, वो भी खुफिया तौर पर।
3: लेकिन क्यों, किस सिलसिले में?
0: उनके आने का मकसद क्या है?
2: जाहिर है, हमारी जांच पड़ताल करने भेजा गया है।
0: खुदा खैर करे, कब तक आने की खबर है सर?
2: कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकता है हजरत अब तक आ ही चुके हो।
0: आई?
4: अरे इतना बड़ा अफसर आए और पुलिस को पता न चले, ये कैसे मुमकिन है?
2: वो सब छोड़ो कप्तान साहब, फिलहाल तो अपने रंग रूटों की वर्दी मर्दी ठीक कराओ, उनका हुलिया सुधरवाओ और ताकीद करो कि जब तक अफसर का दौरा खत्म नहीं हो जाता, घूसखोरी, रिश्वतखोरी, निकम्मेपन और लापरवाही से बाज रहें। और डॉक्टर, आप अपने अस्पताल का हुलिया दुरुस्त करवाइए।
0: हाँ, और क्या, कुछ ही दिनों की तो बात है। फिर
2: कमिश्नर, सड़कों पर लगे कचरों के ढेर हटवाओ, नालियां साफ करवाओ।
0: सर,
2: मतलब ये कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है?
0: यस सर।
2: आप सब अपने अपने काम पर मुस्तैदी से जुट जाइए।
0: ठीक है, इजाजत दीजिए गवर्नर साहब। सलाम।
2: सलाम।
4: रुकिए रुकिए साहिबान, रुकिए।
0: लीजिए, पोस्ट मास्टर अब तशरीफ ला रहे हैं। अरे कहाँ थे जनाब?
4: आप लोग जिसकी चर्चा कर रहे थे, मैं उसका पता ढूंढने में लगा हुआ था और वो मैंने ढूंढ निकाला है।
0: हाय,
5: क्या, कौन है,
4: कहाँ है? अरे बताता हूँ। ए डॉबजिंस्की।
6: जी।
4: सबको सुनाओ वो बात जो तुमने मुझे बताई थी।
6: जी साहिबान, मैं सिटी गेट के पास वाले होटल निकोलस में गया था।
4: वहाँ क्या देखा तुमने?
6: मैंने वहाँ एक अजनबी नौजवान को देखा, रोवीला चेहरा, बेहद कीमती और शानदार लिबास, चाल एकदम अफसराना, और साथ में एक अदद खिदमतगार भी।
2: ओ, बताते चलो।
6: जी, होटल के जो बिल उसके पास भेजे जाते हैं उनका भुगतान नहीं करता, ठाट से दस्तखत करके लौटा देता है।
0: ओहो, ठेठ अफसराना अंदाज।
6: जी, उसने कह रखा है कि बिलों का भुगतान सेंट पीटर्सबर्ग से किया जाएगा।
7: सेंट पीटर

0: क्या करें, चलकर सलाम ठोकाएं सर?
1: फिलहाल तो मैं जाकर संभालता हूं उसे। डोबजिंस्की?
2: जी सर।
1: तुमने उसे देखा है ना?
2: जी हाँ।
1: तो आओ मेरे साथ।
2: जी चलिए।
3: क्या बात है ओसिप, बहरा अब तक खाना नहीं लाया?
4: लाएगा भी नहीं, होटल मालिक ने सख्ती से मना कर दिया है। जब तक पुराना हिसाब चुकता ना हो, हमें खाना ना दिया जाए, ना चाहे।
3: इस होटल वाले की ये जुर्रत, हमारे साथ ये बदतमीजी?
4: क्यों, आप कोई तोप हो? 8 दिनों से बिना ढेला चुकाए ठाट से खा पी रहे हो, बिल आता है तो दस्तखत इस तरह ठोककर लौटा देते हो गोया कहीं के जनरल कर्नल हो।
3: अबे हम जो भी हैं किसी से कम नहीं है। वो तो बुरा हो उस कमबख्त मेजर का, जुए में पत्ते बदलकर मेरी सारी रकम झटक ली। अब क्या करूं? अरे ये कुछ कपड़े बिकवाकर पैसों का इंतजाम कर लो।
4: ठीक है, अभी ले जाता हूं।
3: लेकिन नहीं।
4: क्यों?
3: इन शानदार कपड़ों से ही तो मेरी इज्जत है। अरे ये बेच दिए तो कोई टके को नहीं पूछने वाला।
4: ओफो, तो फिर मैं क्या करूं? भूख के मारे जान निकली जा रही है।
3: अरे किसी भी तरह उस बहरे को पटा ले ओसिप। बस आज और खाना खिला दे, कल होते ना होते हम यहाँ से खिसक लेंगे।
4: कोई खिसकने देगा तब ना? होटल मालिक ने धमकी दी है, सीधा गवर्नर से शिकायत करके जेल की हवा खिलवाएगा हमें।
3: अरे फिलहाल तो कुछ भी खिलवा दे उसे।
4: ठीक है, कोशिश करता हूँ।
0: हुजूर, गवर्नर साहब। खुशामदीद, खुशामदीद। तशरीफ लाइए सर, तशरीफ लाइए। मैं तो आपकी खिदमत में खुद ही हाजिर होने वाला था। दरअसल बात यह है कि एक शख्स अपने नौकर के साथ यहाँ पर ठहरा हुआ है।
5: जी हाँ, उसी के बारे में मालूमात करने आए हैं सर, बुलाओ उन्हें।
0: जी अभी लीजिए। हाँ, वो रहा उसका नौकर। ए सुनो सुनो, अरे क्या नाम है तुम्हारा, इधर आओ।
6: आ गया, फरमाइए।
0: देखो गवर्नर साहब तशरीफ लाए।
6: हाँ तो मैं क्या करूं?
0: अपने मालिक को भेजो। देखा सर आपने, नौकर के ये तेवर हैं तो सोचिए मालिक के क्या होंगे। खैर आपके सामने आते ही दोनों चौकड़ियां मारना भूल जाएंगे।
1: कौन जाने वो कि हम।
0: आपने कुछ फरमाया सरकार?
1: नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। वैसे मालूमात तो की होगी तुमने, कौन है, कहां से आए हैं?
0: हाँ सिर्फ इतना बताया कि सेंट पीटर्सबर्ग से आए हैं, और हाँ होटल के किराए और खाने पीने के बिल पर सिर्फ दस्तखत मार कर लौटा देता है।
1: पता है पता है।
0: फिर तो उसकी अच्छे से खबर लीजिएगा सर।
1: खामोश।
0: जी
1: बकवास बंद करो।
0: ठीक है, जो हुक्म आपका।
4: देखो जिस बात का डर था वो होकर ही रही। चलिए नीचे, गवर्नर साहब आपका इंतजार कर रहे हैं।
3: क्या कहा, गवर्नर?
4: हाँ।
3: मुझसे मिलने आए हैं, लेकिन क्यों?
4: ताकि पकड़कर जेल की हवा खिलवाएं आपको। जाएं जाएं, वरना खींच कर ले जाएंगे उसके सिपाही।
3: अरे ऐसे कैसे ले जाएंगे वो, चल चल आगे चल। अरे घबराता क्यों है?
4: नहीं नहीं नहीं, आप चलो, मैं पीछे पीछे आता हूँ।
0: वो रहा हुजूर, देखिए उसकी चाल किस कदर अकड़कर चल रहा है।
1: क्या करूं, खुद ही आगे बढ़कर बात करूं, यही ठीक रहेगा। जनाब खैरियत तो है?
3: जी करम है ऊपर वाले का, शुक्रिया। आप?
1: मैं इस इलाके का गवर्नर हूं।
3: ओ भाई, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर।
1: मैं खास तौर पर यहाँ ये देखने आया था कि कहीं आप सरीखे खास मेहमानों को इस होटल में कोई तकलीफ तो नहीं।
3: अच्छा अच्छा अच्छा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जी नहीं जनाब, ये तो मेरा फर्ज है।
3: दरअसल इस होटल के बारे में मैं खुद ही आपसे मिलकर बात करना चाहता था। अरे भाई समझ में नहीं आता, इस कदर मामूली सी बात इस होटल मालिक के समझ में क्यों नहीं आ रही कि
1: नालायक हैं, नालायक।

0: आप शरीफ है, खास मेहमानों की खदमत करना भला ये गोड़ मगज क्या जाने। मैं तो कहूंगा ये होटल आप सरीखे मेहमान की शान के मुताबिक है ही नहीं।
1: नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, मैं तो खुद चाहता हूं कि इनका हिसाब फौरन चुकता करके झगड़ा खत्म करूं।
0: अरे काहे का हिसाब, काहे का, आप इसकी चिंता मत कीजिए। सुनो जी, कौन हो तुम?
2: जी होटल वाला
0: साहब, का जो भी बिल हो मेरे दफ्तर से चुका दिया जाएगा।
2: हो गया चुकता, आसमान से गिरे और खजूर में अटके।
0: क्या कहा?
2: मैंने कहा कुछ कहा हुजूर?
0: जरूरत भी नहीं है। आइए जनाब, आइए, आप मेरे गरीब खाने पर चल कर रहिए।
1: लेकिन क्यों? मेरा मतलब आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं?
0: अरे ये तो मेरी खुशकिस्मती होगी। सुनो, क्या नाम है तुम्हारा?
3: औसेफ।
0: हाँ औसेफ साहब, मेरे साथ जा रहे हैं, तुम सारा सामान लेकर आ जाना।
3: जी जी जी जी।
0: लीजिए लीजिए, कुछ तो लीजिए।
1: अरे बस बस बस, काफी हो गया।
0: ओहो, कहाँ, कुछ भी तो नहीं खाया आपने बेटी?
4: जी पापा।
0: भाई मेरे कहने से तो हमारे मेहमान कुछ ले ही नहीं रहे हैं। तुम कहो, शायद तुम्हारी बात मान जाए।
4: ओ लीजिए ना, लगता है आपको खाना पसंद नहीं आया है ना पापा?
0: हाँ बेटी, ये ठहरे सेंट पीटर्सबर्ग के रहने वाले, हम मामूली कस्बे वालों का खाना भला इन्हें क्यों पसंद आने लगा?
1: अरे नहीं नहीं जनाब, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। खाना तो इस कदर लजीज है कि कुछ ज्यादा ही खा गया।
4: सुना पापा, मेहमान क्या फरमा रहे हैं?
0: अब भाई इनकी आवभगत का जिम्मा अब तुम्हारा है, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अच्छा जनाब, अब आप आराम करें, अगर कहीं जाने की मंशा हो तो बता दीजिएगा, मैं तैयार रहूंगा।
1: जाना? वो कहाँ, क्यों, मतलब आप क्यों फिक्र कर रहे हैं?
0: चुपचाप अकेले अकेले मुआयना करना चाहता है, तभी।
1: आपने कुछ कहा?
0: जी नहीं नहीं, मेरा मतलब था आप जिस जगह का भी मुआयना करना चाहें शौक से करें, मैं तो आपकी सहूलियत के लिहाज से साथ चलने की बात कर रहा था। वैसे आप जैसा चाहें इंतजाम हो जाएगा, एक गाड़ी आपकी खिदमत में हमेशा तैयार रहेगी।
1: आप इतना कह रहे हैं तो ठीक है, जहां चाहे ले चलिएगा।
0: यूं तो कई ऐसी जगह हैं जो आप देखना पसंद करेंगे, खास खास जगहों में हमारे स्कूल हैं, हाई स्कूल जरूर देखें, अस्पताल हैं, विधवाओं का सेंटर है, अनाथालय है, चर्च है, जेल खाना है।
1: क्या जेल खाना?
0: चलकर देखिए तो, हमने कैदियों के लिए कितने बढ़िया इंतजाम किए हैं, आपको यकीनन पसंद आएगा।
1: देखिए भाई, वो सब मैं बाद में, पहले तो स्कूल और अस्पताल देखना चाहूंगा।
0: बेहतर है बेहतर है, मैं इंतजाम करता हूं।
4: सुनो
5: जी,
4: क्या नाम है तुम्हारा?
5: औसेफ मोहतरमा, खादिम का नाम औसेफ है।
4: तुम्हारे मालिक कहाँ गए हैं?
5: वो तो आपके पिताजी के साथ कहीं गए हैं।
4: ओह हाँ हाँ, कहीं जाने की बात तो हो रही थी। अच्छा एक बात बताओ सिर्फ।
5: जी।
4: तुम्हारे मालिक के घर में कौन कौन है? मतलब
5: अकेले हैं।
4: अच्छा, अब तक शादी नहीं की?
5: अरे मैडम, उन्हें फुर्सत मिले तब ना शादी के बारे में सोचे हैं।
4: ओह क्यों, फुर्सत क्यों नहीं मिली?
5: अब आपसे क्या छिपाना मैडम, सेंट पीटर्सबर्ग के रईसों की जिंदगी के बारे में तो आप जानती होंगी। फिर हमारे मालिक एक तो शौकीन मिजाज, ऊपर से ऐसे सजीले और दिखलौट कि लोग बस घेरे ही रहते हैं। घर में हैं तो कभी ये काउंट चले आ रहे हैं, कभी वो जनरल, कभी फला मिनिस्टर तो कभी फला राजदूत।
4: ओहो।
5: कभी एक लेखक चला रहा है, कभी वो एक्टर तो कभी वो एक्ट्रेस।
4: एक्टर एक्ट्रेस, वो क्यों?
5: थिएटर का बहुत शौक जो है।
4: अच्छा, और क्या क्या शौक है उनके?
5: उनके ओह हाँ, लिखने का बड़ा शौक है, मौका मिलते ही लिखने बैठ जाते।

0: आते हैं।
1: अच्छा, क्या लिखते हैं भला, हमें भी तो सुनाओ।
0: ये क्या बोल गया मैं? वो तो आप उन्हीं से पूछिएगा, मैं बेपढ़ा लिखा क्या जानू। लगता है आ गए, मैं चलूं।
2: वैसे मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन यूं ही अगर आपको
3: हाँ हाँ पूछिए पूछिए।
2: आपने अस्पताल देखा, कैसा लगा?
3: ठीक है, लेकिन मरीज गिनती के ऐसा क्यों?
2: मुझे डर था इसी बात का। वो बात ये है कि मरीज तो आते हैं, काफी बड़ी तादाद में आते हैं, लेकिन इलाज के इंतजाम कुछ इस तरह किए गए हैं कि मर्ज फौरन रवाना हो जाता है।
3: ओ, ऐसा तो नहीं मर्ज के साथ साथ मरीज भी रवाना?
2: नहीं। ओह, मजाक मजाक। और हाई स्कूल?
3: हाई स्कूल उसके बारे में तो सोचना पड़ेगा।
2: सत्यानाश,
1: आ गए आप लोग। कहिए, कहाँ कहाँ घूमाए आप, कैसा लगा हमारा कस्बा?
2: लीजिए, अब दीजिए साहबजादी के सवालों के जवाब। मैं तो चला।
1: मैं ना जानती थी एक साथ कितने कितने गुण हैं आप में।
3: ना जी ना, मैं कहाँ, मामूली सा आदमी ठहरा।
1: बस बस, बातें मत बनाइए, मुझे सब पता चल चुका है।
3: बाप रे बाप, क्या क्या मालूम कर लिया है इस लड़की ने मेरे बारे में। क्या पता चल चुका है अन्ना ओवोलोवा?
1: यही कि आप लिखते भी हैं।
3: अच्छा अच्छा अच्छा, वो बात। हाँ हाँ, कभी कभी कुछ लिख लेता हूँ।
1: और सुना है जनाब बड़ी खूबसूरत खूबसूरत एक्ट्रेसेस से घिरे रहते हैं।
3: ओ, क्या बताऊं, जबरदस्ती घेर घार के मुझसे अपने लिए नाटक लिखवा लेती हैं। अरे भाई, लिखना पड़ता है।
1: ओहो, कौन कौन से नाटक लिखे हैं आपने?
3: कई कई तरह के नाटक लिखे। अरे मैं तो नाम भी भूल जाता हूँ।
1: फिर भी
3: फिगारो, स्कूल फॉर स्कैंडल।
1: अच्छा, ये नाटक आपने लिखा है, क्योंकि नाम तो किसी और।
3: अरे नाम में क्या रखा है, मैं तो लिखकर भूल जाता हूँ। लोग अपने अपने नाम से छपवा कर खुश होते हूँ, तो इसमें मुझे क्या इतराज।
1: ओह, कितना बड़ा दिल है आपका। वैसे जितना कुछ सुना है आपके बारे में, हैरत होती है एक साथ इतने काम कैसे कर लेते हैं आप, और वो भी ऐसे कि एक दूसरे से जिनका कोई मेल नहीं है। कहाँ कविताएं, नाटक लिखना, थिएटर, और कहाँ दूर दूर कस्बे में जाकर अस्पताल, जेल, स्कूल, और भगवान जाने किन किन चीजों का मुआयना करना।
3: मुआयना?
1: देखा आपने, जो बात आप छुपाना चाहते थे वो हमें पता चल गई है। कैसी रही?
3: देखो अन्ना, ये बात तुम अपने तक ही रखना, हाँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए।
1: समझ गई समझ गई। आप एकदम निश्चिंत हो जाइए, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी।
3: मुझे यकीन है आप पर।
1: और मुझे आप पर।
3: जी?
1: मेरा मतलब सेंट पीटर्सबर्ग में आपके क्या ठाट है ना?
3: अब मैं अपने मुंह से क्या बताऊं, काश आप खुद देख पाती और वहां की मौज मस्ती भरी जिंदगी का लुत्फ उठा पाती।
1: ओह, क्या ये कभी मुमकिन हो सकेगा?
3: अब आप चाहें तो जिंदगी भर पीटर्सबर्ग में पूरी शान से बिता सकती हैं।
1: वाकई?
3: अगर आप चाहें।
1: मेरे जाने भर से क्या होगा, आपको पापा से बात करनी होगी।
3: पापा? ओह, समझा। जरूर जरूर, ऐसा है कि अभी मुझे अपनी पुश्तैनी जागीर जाकर कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। पिताजी ने बुलाया है, तो मैं उनकी भी रजामंदी ले लूंगा, फिर आपके पापा से बात कर ली जाएगी।
1: ओह, मैं कितनी खुश हूँ।

0: तैयारी कर रहे हैं।
1: वाकई ये तो बड़ी अच्छी खबर है।
0: अच्छी खबर होगी गवर्नर के लिए। इंस्पेक्टर जनरल उनके सारे ऐब, कमियां, खराबियां, भ्रष्टाचार वगैरह वगैरह को मजे से नजरअंदाज कर देगा। मारे तो हम लोग जाएंगे।
1: हाँ ये तो है। फिर क्या करें हम लोग?
0: एक ही तरीका है, हथेली गरम कर दें उसकी फुर्सत।
1: हाँ हाँ यही ठीक रहेगा। लेकिन उसे रिश्वत देंगे किस तरह? सीधे सीधे देने पर कहीं भड़क गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे सर।
2: मेरे पास एक उपाय है।
1: क्या?
2: तो क्या? हम जाकर उसे थैली थमा देंगे। वो पूछेगा तो बता देंगे किसी ने डाक से भिजवाई है वो रकम।
0: डाक से वो तुम्हें भी साइबेरिया रवाना कर देगा सीधा।
1: ये भी है, तो फिर क्या करें सर?
0: जो भी हो उसकी मुट्ठी तो हर हाल में गर्म करना ही होगी।
1: हम तैयार हैं, लेकिन जज साहब आप ही हम लोगों में सबसे ज्यादा अनुभवी हैं
2: लेन देन के मामलों में,
1: तो पहल तो आप ही को करनी होगी और पीछे पीछे हम लोग हैं ही।
0: तो बिल्ली के गले में घंटी मैं बांधूंगा, ठीक है?

0: कौन है?
1: सर सर मैं हूँ कस्बे का जज।
0: जज साहब, आइए आइए, तशरीफ लाइए। कहिए कैसे आना हुआ?
1: जी कोई खास बात नहीं है, बस सुना कि आप अपने पिताजी से मिलने जा रहे हैं।
0: हाँ, अपनी पुश्तैनी जागीर।
1: जी हाँ जी हाँ, वही वही। मुट्ठी में रुपए रखे हुए हैं, लेकिन कमबख्त को दूं तो कैसे दूं?
0: ये आपकी मुट्ठी में क्या है?
1: मुट्ठी में? ओह माफ कीजिए, वो ये रुपए जाने कैसे?
0: अरे ना ना ना ना, आप सच पूछिए तो ये रुपए सही वक्त पर यहाँ पहुँचे हैं।
1: ओह तो समझिए ये आपके ही हैं।
0: नहीं जनाब, इस तरह नहीं। दरअसल सफर में मेरी सारी रकम खर्च हो गई और अभी अपनी जागीर भी पहुँचना है मुझे, तो यूं समझिए कि ये रकम मैं आपसे थोड़े वक्त के लिए उधार ले रहा हूँ। उधार?
1: आप जो भी समझकर लेना चाहें बस ले लीजिए। शुक्रिया जनाब, अब मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आदाब।
0: आदाब। क्या बात है, मजा आ गया मजा।
2: क्या हुआ जज साहब, क्या हुआ?
1: अरे हम तो बेकार डर रहे थे, वो तो अच्छा आदमी है भाई, जितनी जी चाहे रकम दे दो ले लेगा उधार कहकर।
2: उधार?
1: भाई अपना अपना तरीका होता है, जाइए जाइए एक एक करके और थमा आइए।
3: क्या कह रहे हैं आप, खुद आकर देके गए?
0: और क्या, ये देखो।
3: अरे हुजूर, तो अब इंतजार किस बात का है, यहाँ से फौरन निकल ले।
0: अरे क्यों, ऐसी क्या जल्दी है? कुछ दिन और ये मुफ्त के रईसाना ठाट उठा लें तो क्या हर्ज है? जानते हो ये बेवकूफ लोग मुझे पीटर्सबर्ग से भेजा गया खुफिया इंस्पेक्टर जनरल समझ रहे हैं। तभी तो ये खातिर तवाजों से खुशामदें और ये थैलियां।
3: अच्छा अगर ऐसा है तो फिर यहाँ ज्यादा रुकना खतरे से खाली नहीं?
0: मतलब?
3: मतलब अगर भांडा फूट गया तो, अगर असली इंस्पेक्टर जनरल आदम का तो।
0: बात तो तेरी सही है, ऐसा करो सिर्फ कोई अच्छी बग्गी देखकर किराए पर ले ले, और हाँ घोड़े मजबूत और तेज दौड़ने वाले हों।
3: वो तो नहीं चाहिए, तो जाऊं?
0: रुक रुक रुक, थोड़ा सा रुक, मैं ये खत लिख रहा हूँ, डाकखाने में इसे भी छोड़ देना।
2: खत? कैसा खत?
0: अरे मेरा एक दोस्त है पत्रकार है, उसके अखबार में तरह तरह की चटपटी बातें छपती रहती हैं, तो बस यहाँ के हाल लिखकर भेज रहा हूँ, छपने पर बहुत मजा आएगा।
3: ठीक है, लेकिन जरा जल्दी, अब तो यहाँ थोड़ा भी रुकने का मतलब है बड़ी मुसीबत में फंसना। या खुदा, बस वक्त रहते यहाँ से निकल भागे तो अच्छा है।

0: अच्छा, तो इंस्पेक्टर जनरल चले गए?
1: अपनी जागीर गए हैं, जल्दी लौट आएंगे।
0: अब तो वो आपके दामाद हो जाएंगे और आप इंस्पेक्टर जनरल के ससुर।
2: हम पर दया बनाए रखिएगा सर।
1: ये भी कोई कहने की बात है। वैसे सोच रहा हूँ बेटी दामाद के साथ मैं भी पीटर्सबर्ग चला जाऊंगा। तंग आ गया इस छोटे और पिछड़े कस्बे में रहते रहते।
0: सही है, इतने ताल्लुकात और रसूख वाले दामाद के होते हुए यहाँ पड़े रहने में क्या दुख है? वहाँ तो एक से एक बड़ा ओहदा आपको यूं ही मिल जाएगा।
2: इसमें क्या शक है? ये पोस्टमास्टर, इसका तो बदहवास सा कैसा भागता हुआ चला आ रहा है। कहिए जनाब, खैरियत तो है?
3: ये देखिए, पढ़िए।
1: ये खत तो इंस्पेक्टर जनरल का है। तुमने खोलने की जरूरत कैसे की पोस्टमास्टर?
3: पढ़ लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। दरअसल जब मैंने इस पर लिखा पता देखा तो मेरा माथा ठनका। ये देखिए पता, पोस्ट ऑफिस, डिपार्टमेंट रोड, सेंट पीटर्सबर्ग। मुझे लगा जरूर मेरी कोई शिकायत भेजी जा रही है, लिहाजा एहतियातन इसे खोल लिया। और देखिए कमबख्त ने क्या क्या लिखा है।
1: क्या होश में तो है पोस्टमास्टर? मेरे होने वाले दामाद को कमबख्त कह रहे हो?
3: अरे नाराज होने से पहले जरा खुद पढ़ लीजिए, आपके होनहार दामाद ने आपकी तारीफ में क्या क्या लिखा है। लिखते हैं, इस सूबे का गवर्नर अव्वल दर्जे का घोंचू आदमी है, मुझे इंस्पेक्टर जनरल समझकर अपने बंगले में ठहराए हुए है, खूब खातिर करता है, और तो और मुझे अपना दामाद बनाने के मंसूबे भी बांधने लगा है।
1: बस, ए, सुनो, तेज से तेज गाड़ियां दौड़ाकर कंबख्त को पकड़ो किसी तरह।
2: सर अब वो पकड़ में नहीं आने वाला सर, कई घंटों पहले बेहद तेज और चुस्त घोड़ों वाली बग्गी में बैठकर भाग निकला है।
0: हम सबकी आंखों में धूल झोंक कर,
2: मोटी मोटी रकमें ऐड कर।
1: तो अब क्या किया जाए?
3: तैयारी
1: है? कैसे तैयारी, काहे की तैयारी?
3: ये टेलीग्राम भी लेकर आया हूँ, सेंट पीटर्सबर्ग से आया है आपके नाम, पढ़ लीजिए।
1: लाओ।
4: आपको इत्तला दी जाती है कि आपके सभी महकमों की जांच पड़ताल करने के लिए एक इंस्पेक्टर जनरल को यहाँ से रवाना कर दिया गया है।

0: इंस्पेक्टर जनरल, अभी आप निकोलाई गोगोल के इस मूल रूसी नाटक का हिंदी रेडियो रूपांतरण सुन रहे थे। रूपांतरकार थे दिनेश राय। भूमिका सहित कलाकारों का परिचय इस प्रकार है। कमिश्नर मनोज राजानी, गवर्नर राकेश जैमिनी, जज उदय शहाणे, पोस्ट मास्टर प्रदीप नेमा, चालबाज अरशद इकबाल, दोबजिंस्की अजय सिंह पाल, खादिम बालेंद्र सिंह कुशवाहा, होटल वाला योगेश कुमार उमाठे और अन्ना दिव्या पवार। इस नाटक के प्रस्तुतकर्ता थे राकेश ढोंडियाल।
1: अभी आप सुन रहे थे नाटक इंस्पेक्टर जनरल। इसके लेखक थे निकोलाई गोगोल, प्रस्तुतकर्ता थे राकेश ढोंडियाल। यह आकाशवाणी भोपाल है।

0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। अब आप सुनेंगे दतिया जिले की चिट्ठी।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है दतिया जिले की चिट्ठी। आलेख मनोज गोस्वामी का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। दतिया जिला इन दिनों राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है। विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां पूरे जिले में जोर शोर से चल रही हैं। राजनीतिक दल गांव-गांव और वार्ड वार्ड तक पहुंचकर मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था, फ्लैग मार्च, मतदान केंद्रों की तैयारियों और निर्वाचन संबंधी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भारती को दिल्ली की विशेष MP MLA कोर्ट ने 20 साल पुराने बैंक FD घोटाले के मामले में 3 साल की सजा सुनाई थी, जिससे उनकी सदस्यता रद्द होने से उपचुनाव कराना जरूरी हुआ। उपचुनाव की अधिसूचना 6 जुलाई को जारी की गई। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 13 जुलाई है। नामांकन जांच 14 जुलाई तक और नाम वापसी 16 जुलाई तक की जा सकती है। मतदान 30 जुलाई को होगा और 3 अगस्त को मतगणना के साथ ही नतीजे की घोषणा हो सकती है। दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव के सफल, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संचालन को दृष्टिगत रखते हुए अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में जिले के पेट्रोल पंप संचालकों की बैठक बीते दिनों आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अब रुख करते हैं बारिश की खबर का। मानसून की बारिश शुरू होने के साथ ही दतिया जिले के किसान खरीफ सीजन की खेती में जुट गए हैं। जिले में धान, सोयाबीन, उड़द, मूंग और तिल की बुआई का काम तेजी से चल रहा है। कृषि विभाग किसानों को उन्नत बीज, संतुलित उर्वरक उपयोग और आधुनिक कृषि तकनीकों की सलाह दे रहा है। समय पर बारिश से किसानों के चेहरे पर संतोष दिखाई दे रहा है। हालांकि वे अच्छी बारिश के सिलसिले के बने रहने की उम्मीद लगाए हुए हैं। दतिया जिले में 1 जून से अब तक कुल 494 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो पिछले साल इसी अवधि की तुलना में 264 मिलीमीटर कम है। दतिया जिला प्रशासन उपचुनाव की तैयारियों के साथ साथ अलग अलग विभागों के माध्यम से राजस्व, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, स्वच्छता और जन कल्याणकारी योजनाओं की नियमित समीक्षा में भी जुटा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति, सड़क मरम्मत, विद्यालयों की व्यवस्थाओं तथा स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के प्रयास लगातार जारी हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन भी पूरी सतर्कता के साथ काम कर रहा है। बीते मंगलवार को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े और पुलिस अधीक्षक श्री मयूर खंडेलवाल ने संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च शहर के मां पीताम्बरा पीठ मंदिर के सामने एक चौराहे से होते हुए गंज, राजगढ़ मार्ग, टाउन हॉल, बड़ा बाजार, पटवा तिराहा, किला चौक, दारूगर की पुलिया, बिहारी जी मंदिर और तिगैलिया होते हुए प्रमुख मार्गों एवं संवेदनशील क्षेत्रों से होकर गुजरा। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा निर्वाचन ड्यूटी में तैनात पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी दतिया की पहचान लगातार मजबूत हो रही है। विश्व प्रसिद्ध माँ पीताम्बरा शक्तिपीठ में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। प्रशासन द्वारा मंदिर क्षेत्र में सुरक्षा, यातायात और स्वच्छता की व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। जिले में सामाजिक जनजागरूकता संबंधी कार्यक्रम भी लगातार आयोजित किए जा रहे हैं। पौधरोपण अभियान, स्वच्छता अभियान, स्वास्थ्य शिविर, महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यक्रम, युवा गतिविधियां तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं के जागरूकता अभियान लोगों तक पहुंच रहे हैं। शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण जैसे विषयों पर भी प्रशासन और सामाजिक संस्थाएं सक्रिय भूमिका

0: निभा रही हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा जिला पुरातत्व पर्यटन तथा संस्कृति परिषद दतिया एवं स्कूल शिक्षा विभाग के सहयोग से पर्यटन क्विज प्रतियोगिता 2026 का आयोजन किया जा रहा है, जो कि दो चरणों में आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता के प्रथम चरण में जिले के समस्त शासकीय तथा अशासकीय विद्यालयों द्वारा अपनी टीम का पंजीयन कराया जा सकेगा तथा इस प्रतियोगिता में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। प्रतियोगिता में पंजीयन के लिए 25 जुलाई तक ऑनलाइन माध्यम से पंजीयन कराया जा सकता है। प्रतियोगिता 7 अगस्त 2026 से सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। दतिया के नागरिकों की अपेक्षाएं आज भी विकास, रोजगार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, निर्बाध बिजली, पर्याप्त पेयजल और सुरक्षित वातावरण को लेकर बनी हुई हैं। उपचुनाव के इस दौर में मतदाता केवल राजनीतिक वादों से आगे बढ़कर विकास के ठोस कार्यों को प्राथमिकता दे रहे हैं। आने वाले दिनों में चुनावी गतिविधियां और तेज होंगी, लेकिन इसके साथ साथ खेती, विकास कार्य, प्रशासनिक सक्रियता और सामाजिक कार्यक्रम भी जिले की प्रगति की दिशा तय करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि इस लोकतांत्रिक उत्सव के साथ विकास की गति भी निरंतर आगे बढ़ेगी और दतिया नई उपलब्धियों की ओर अग्रसर होगा। दतिया जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए वंदे मातरम गौरवगान की डेढ़ सदी।

वंदे मातरम। वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि भारत की आत्मा का स्वर है। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में की थी। इस गीत में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लाखों देशवासियों में राष्ट्रप्रेम और स्वाधीनता की चेतना जगाई।

अभी आप सुन रहे थे वंदे मातरम गौरव गान की 150वीं। अभी कार्यक्रम समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे विश्व दर्पण। ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित किया। वैश्विक अनिश्चितता, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और ऊर्जा संकट के बीच भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता करेंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का आज विशाल और अंतिम विरोध प्रदर्शन। सरकार को मांगे मनवाने के लिए 48 घंटे का समय दिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संघर्ष विराम को समाप्त किए जाने की घोषणा के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हमले किए और भारत के अर्णव पापरकर 36 वर्षों में विंबलडन जूनियर्स 2026 में एकल क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने आज मेलबर्न में उच्च स्तरीय भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम और आर्थिक कार्य योजना कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी एक परिवर्तनकारी उच्च तकनीकी युग में प्रवेश कर चुकी है। उन्होंने वर्ष 2030 तक 100 अरब अमरीकी डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को गति देने के लिए एक दूरदर्शी कार्य योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने वैश्विक अनिश्चितता, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और ऊर्जा संकट के बीच भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया स्थिरता के स्वाभाविक विश्वसनीय स्तंभों के रूप में एक साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में दोनों देशों के बीच संपन्न हुए व्यापार समझौते से आर्थिक संबंधों में मजबूती आई है।
1: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है।
0: उन्होंने भविष्य के लिए तैयार सीमाओं पर गहन वाणिज्यिक सहयोग का आह्वान किया। प्रमुख उद्योगों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने भारत के अभूतपूर्व ढांचागत विस्तार के बारे में भी जानकारी दी।
1: भारत में पोर्ट, एयरपोर्ट, रोड, रेलवे और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑस्ट्रेलिया के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अनेक अनेक संभावनाएं हैं। आज भारत में नेशनल हाईवे लगभग 34 किलोमीटर प्रतिदिन की गति से बढ़ रहे हैं। हर दिन 8 किलोमीटर से अधिक रेलवे ट्रैक्स लगाए जा रहे हैं। यह स्केल, स्पीड और स्टेबिलिटी

0: तीनों का संगम है।
1: श्री मोदी ने कहा कि उच्च तकनीकी क्षेत्र में 10 अरब अमरीकी डॉलर के सरकारी प्रोत्साहन कार्यक्रम के माध्यम से सेमीकंडक्टर, एआई क्वांटम कंप्यूटिंग, डेटा सेंटर और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में प्रगति संभव है।
0: एआई मिशन, क्वांटम मिशन और सेमीकंडक्टर प्रोग्राम के अंतर्गत भारत सरकार ने 10 बिलियन डॉलर से ज्यादा का सपोर्ट दिया। हम डेटा सेंटर, एआई, क्वांटम, सेमीकंडक्टर और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में मिलकर ग्लोबल सॉल्यूशंस तैयार कर सकते हैं।
1: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने ऑस्ट्रेलिया भारत गठबंधन के ऐतिहासिक परिवर्तन का उल्लेख किया, जो समानांतर यात्राओं से एकीकृत भविष्य के लिए साझेदारी में परिवर्तित हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री अल्बनीज ने इस बात पर जोर दिया कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर मजबूती से अग्रसर है।
2: भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आर्थिक साझेदारी को नई दिशा देने के लिए व्यापार, निवेश और औद्योगिक सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया है। मेलबर्न में आयोजित भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग अब पारंपरिक कूटनीतिक ढांचे से आगे बढ़कर भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित हो रहा है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्राकृतिक संसाधनों को भारत की स्वच्छ ऊर्जा, सेमीकंडक्टर विनिर्माण और डिजिटल अवसंरचना से जोड़ने के लिए राज्यों के बीच प्रत्यक्ष आर्थिक सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश और औद्योगिक सहयोग लगातार विस्तार पा रहा है। दोनों नेताओं ने नीतिगत सहयोग के साथ साथ उद्योग जगत की सक्रिय भागीदारी और ऑस्ट्रेलिया में रह रहे 10 लाख से अधिक भारतीय मूल के लोगों की भूमिका भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक संबंधों को और मजबूत बनाने तथा द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर के लक्ष्य तक पहुंचाने पर बल दिया। सुहास राम की रिपोर्ट के साथ विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं फरहत नाज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2026 के दौरान इसकी 7% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। IMF ने यह भी अनुमान जताया है कि अगले वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर कुछ घटकर 6.4% रह सकती है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बढ़ती राजनीतिक अशांति के बीच विरोध प्रदर्शन कर रहे प्रमुख गुट संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAC ने आज एक बड़े और आखिरी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। यह आह्वान उनकी मांगे मानने के लिए 48 घंटे की समय सीमा का पालन करने में पाकिस्तान के विफल रहने के बाद किया गया है। अमेरिका ने ईरान पर फिर हवाई हमले किए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमला करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि अमरीकी हमले जवाबी कार्रवाई में किए गए थे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने फिर हमले किए तो अमरीका इसका और कड़ा जवाब देगा। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: जी मुनीश, खेल खबरों में सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 10 बजे शुरू होगा। इंग्लैंड श्रृंखला में फिलहाल 2-0 से आगे है और श्रृंखला में बने रहने के लिए भारत को हर हाल में ये मैच जीतना ही होगा। और भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स टेनिस में लड़कों के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। पिछले 36 वर्षों में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले वाले वे भारत के पहले खिलाड़ी हैं। 18 वर्षीय पापरकर ने प्री क्वार्टर फाइनल में जापान के रयो ताबाता को मात्र 52 मिनट में 6-2 6-1 से हराया। इससे पहले उन्होंने पहले दौर में ब्रिटेन और अगले दौर में अमरीकी खिलाड़ी को हराया था। उन्होंने इस टूर्नामेंट में अभी तक एक भी सेट नहीं गवाया है। पापरकर का अगला मुकाबला आज शाम 5 बजे क्वार्टर फाइनल में अमरीका के जॉर्डन ली से होगा। और अगर बात करें शतरंज की बाजी की तो कन्याकुमारी के 17 वर्षीय अश्वथ एस पुणे इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर राउंड रॉबिन में अपना अंतिम ग्रैंड मास्टर नाम हासिल करते हुए भारत के 98वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अंतिम दौर में अश्वथ ने काले मोहरों से खेलते हुए अमरीका के कन्नन वैद्यनाथन को हराकर ग्रैंड मास्टर का खिताब अपने नाम किया। उन्होंने 9 राउंड में 7 अंक प्राप्त करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया है। जी मुनीश, तो ये थी आज की खेल जगत से जुड़ी खबरें।
1: शुक्रिया मुकेश। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता करेंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर प्रदर्शनकारियों का आज विशाल और अंतिम विरोध प्रदर्शन। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संघर्ष विराम को समाप्त किए जाने की घोषणा के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हमले किए। और भारत के अर्णव पापरकर 36 वर्षों में विंबलडन जूनियर्स 2026 में एकल क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। और इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सारंगा। कार्यक्रम का पहला गीत है दलेर मेहंदी और चित्रा के युगल स्वरों में, फिल्म रंग दे बसंती का। गीतकार है प्रसून जोशी और संगीत दिया है एआर रहमान ने। इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं बिलहरी लरखेड़ा से संतोष ठाकुर, रामाधार दुबे, सुमेर पटेल, सुदामा सेन, सुजीत बर्मन और अफजल खान, ग्राम पैरुआ से रामकुमार लोधी और गोविंद यादव, राजपुर से लक्ष्मी माधुरी, सोनाली भगवान, पुष्पा नेहा, एकता, अस्मिता, सौरभ और कुणाल। आइए सुनते हैं इन सबकी पसंद का ये गीत।

और लीजिए अगला गीत सुनिए फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से, आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। गीत के बोल लिखे हैं प्रकाश मेरा ने और धुन तैयार की है कल्याण जी आनंद जी ने। इस गीत को सुनना चाहते हैं कुंदानगर खरगोन से ध्रुवा सोनवल ने, सुनीता, खुशी, प्रियांश, आशीष, पूनम, कृष्णा और शुभम।

अगली फरमाइश आई है हमारे पास फिल्म बॉम्बे के गीत के लिए। आवाज़ है जोजो की, गीतकार है महबूब और संगीत है एआर रहमान का। पसंद करने वाले श्रोता हैं महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे, गायत्री धनजे, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद्य, रानी वैद्य, महिमा वैद्य और नीतू वैद्य, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतेक बिरक और मीका बिरक। आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत।